0: बुला गया अपने एंट्री पॉइंट पर।
1: नहीं राहुल तो यहाँ नहीं है।
0: अरे बॉडी में क्या कर लेंगे, दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो क्या प्लीज।
1: ओ गॉड मैं अभी आया। श्रुति श्रुति राहुल मिला क्या?
2: नहीं मिला।